0: और तुम्हारी बीवी?
1: छोड़ के चली गई मुझे, दूर, बहुत दूर।
2: मोहतरम सामीन, नियाम अंसारी नदवतुल उलमा के तालिबे इल्मी के जरिए एक छोटा सा मजमून कमाल ये है, पेश खिदमत है, बगौर सुनने की दरख्वास्त की है नियाम बाबू ने, वो ये कि खजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जिद पे दिया जलाना और जलाए रखना कमाल ये है, जरा सी लग्जिश पे तोड़ दिए हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे और वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख पिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसुओं को छुपा के रखना कमाल ये है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है, हजार हो ताकत हो सौ दलीलें फिर भी लहजे में आजिजी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। मोहतरम सामीन, नियाम अंसारी के जरिए इरसाल करदा एक छोटा सा मजमून कमाल ये है, शायरी के अंदाज में समाअत फरमा रहे थे, और अब पेश खिदमत है एक गजल जिसका बोल है, जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, और आवाज है राहत फतेह अली खान साहब की, समाअत फरमाएं।